गेड़ मुड़ पूरे ताल बाजारी बाजार मैं आए कड़े बाजार गावे राजे राणिया बोले अल्पताल लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार जित तन पाइए नानका सेतन होवे शार ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाइए होर हिकमत हुक्म खुआर पौड़ी नजर करै जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया एहो जियो बहुते जन भ्रमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जेवड़ दाता को नहीं सब सुनियो लोक सबाया सतगुर मिलिया सच पाया जिनी विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सलोक महला पहला घड़ियां सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तानो वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसै ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल महला पहला वायन चेले नचन गुर पैर हलाए नू फिरन सिर उड़ उड़ रावा चाटे पाए वेखे लोग हसै कर जाए रोटियां

नानक जिन करतै कारण किया सो जाणै करतार। पौड़ी बिन सतगुर कहने ना पायो, बिन सतगुर कहने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नूं कर प्रगटिया सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम इहो विचार है जिन सच्चे सिउ चित लाया, जग जीवन दाता पाया। श्लोक महला पहला, हौं आया हौं गया, हौं जमया हौं मुआ, हौं दिता हौं लया, हौं खटिया हौं गया। हौं विच सचियार कूड़ियार, हौं च पापुन विचार, हौं विच नरक सुरग अवतार। हौं विच हसै हौं विच रोवै, हौं विच भरीऐ हौं विच तोवै, हौं जाति जनसी खोवै। हौं विच मूर्ख हौं विच सियाणा, मूख मूत की सार ना जाणा। हौं विच माया हौं विच छाया, हौं मैं कर कर जन तो

कूड़ की मल उतरै तन करे अच्छा धोए। सच तां पर जानी है जा सच तरे प्यार, नाओ सुन मन रेसी है तां पाए मुख द्वार। सच तां पर जानी है जा जुगत जाने जीओ, धरत काया साध कै विच दे करता बीओ। सच तां पर जानी है जा सिख सची ले, दया जाने जी की किश पुन दान करे। सच तां पर जानी है जा आत्म तीर्थ करे निवास, सतगुरु नो पुछ कै बह रहै करे निवास। सच सब ना होए दारू पाप कड्डै तोए, नानक वखाणै बेनती जिन सच पल्लै होए। पौड़ी दान महिंडा तली खाक, जे मिलै तां मस्तक लाइऐ। कूड़ा लालच छड्डीऐ होए इक मन अलख त्याइऐ। फलते वे हो पाइऐ जे वेही कार कमाइऐ। जे होवै पूर्व लिखिया तां धूड़ तिना दी पाइऐ, मां थोड़ी सेव गवाइऐ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਾਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ, ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ। ਜੇ ਕਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈ ਹੈ ਸਰਮ ਭਾਉ ਤਨ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰੱਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਧੀ ਰਹੀਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ।